अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

नमः पार्वते पतये हर हर।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत के सभी जीव देव अथवा आसुरी स्वभाव के होते हैं। श्री भगवान दोनों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि असुर स्वभाव वाले जन्मों तक मुझे नहीं समझ पाते, वह अंततः अधम योनि को प्राप्त होते हैं।

श्री गोविंद काम क्रोध व लोभ को नरक के तीन द्वारों की संज्ञा देते हैं। वह कहते हैं कि काम के प्रभाव में शास्त्र विधि का त्याग करने वालों की गति असंभव है। अतः हे मानव, इन तम द्वारों से मुक्त होकर शास्त्रानुसार कर्मों में लीन हो।

0: महानदी, महानदी। चित्रोत्पला, महानदी।
1: मेरा परिचय खोज रहे हैं। महानदी का परिचय? अरे मैं ही तो महानदी हूँ।
0: हाँ?
1: हाँ, मैं ही। मेरा जन्म स्थल मध्य प्रदेश में सिहावा पहाड़, छत्तीसगढ़ का इलाका, मेरे बालपन की क्रीड़ा भूमि, वहां से आई हूँ। चमचमाती उछलती पहुंची विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र की ओर, फिर मालभूमि पार कर समतल प्रदेश की तरफ। छत्तीसगढ़ की लाडली कन्या हूँ मैं। यहाँ की नन्ही बालाओं के साथ चलते हुए चपल गति में छंद सीखा, तुतला कर बोलना, अधेर किसानों से सुना स्नेह संबोधन, साथ लेकर बह चली आगे की ओर। उड़ीसा बना यौवन की रंग भूमि। वहाँ मधुर प्रकृति के मनोहर गोद में नाची हूँ, गीत गाया है अपने प्रियतम सागर से मिल जाने तक।

सिहावा पर्वत शिखर से पारादीप के पास संगम तट की दूरी है 851 किलोमीटर। इसमें से महानदी 357 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 494 किलोमीटर उड़ीसा में बहती है। कहते हैं सिहावा में कभी श्रृंग ऋषि का पुराण प्रसिद्ध आश्रम था। आज भी सिहावा के पास की पहाड़ियों को यहाँ के लोग गर्ग, कुंभज और मुचकुंद आदि पुराण युग के विशिष्ट ऋषियों के नामों से ही जानते हैं। सिहावा गांव के छोटे छोटे खपरेल के घर, उनको छूकर बहती हुई महानदी की जीर्ण छीर्ण धारा, कैनवास पर किसी निपुण चित्रकार के हाथ से खिंचे चित्र की तरह दिख जाते हैं। यहां का शीतल मंद पवन मानो बहाए ले जा रहा है अतीत, बहुत दूर की बात, रामायण की कथा।

लोंगताद महाराजा के राज्य में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ा। राजा का आदेश पाकर जरता वेश्या श्रृंगी ऋषि को अपने रूप और सौंदर्य से वशीभूत कर वहां ले आई। फलस्वरूप राज्य

0: घर में वृष्टिपात हुआ और साथ ही दुर्भिक्ष दूर हो गया।
1: अजन उन्हीं ब्रह्मचारी श्रृंगी के तप बल से छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी का उद्भव हुआ। महानदी की धारा पर्वत तट के गणेश घाट से ही दिखाई देने लगती है। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गोविंदपुर गांव के निकट से निकली सोनामुखी धारा के साथ मिलकर ये महानदी नाम धारण करती आगे बढ़ती है और इसी के साथ साथ बहती चलती है सीता नदी। सिहावा और महानदी की महिमा के बारे में यहाँ के पुजारी श्री मुरली गिरधर कहते हैं,
2: तो यहाँ सिहावा गांव में बहुत से बहुत स्थान पाए गए हैं। उर्वा की ओर में नजदीक में शीतला माने हुए देवी पाए गए हैं और उसी पहाड़ में माता शांता की गुफा वहाँ भी पाए गए हैं और इसी पहाड़ में दुर्गा महाकाली दुर्गे की स्थान गुफा यहाँ भी पाए गए हैं। यहाँ गांव वाले भाइयों की रोजगारी केवल खेती बाड़ी ये दो सिवाय और कोई गुंजाइश नहीं।
0: कभी सुना है आपने छत्तीसगढ़ के सरल निष्कपट किसान विमल स्वरों में कैसे मेरा गुणगान करते हैं? सफेद चांदी जब मेरी देह पर चांदी की चादर ओढ़ा देती है तब उनका सम्मिलित स्वर मेरे किनारे के पहाड़ शिला वृक्षादि सबको मुग्ध कर देते हैं। मैं रुक रुक कर सुनती हूँ। रुक रुक कर

0: महानदी तट पर अवस्थित राजिम इलाके का पुराणों और इतिहास में बहुत महत्व है। यहाँ पर महानदी में उसकी सहायक नदियाँ पैरी और सोंढूर आ मिलती हैं और इस मिलन स्थली पर प्राचीन शिव मंदिर कुलेश्वर अवस्थित है। 9वीं शताब्दी में राजा विलासतुंग ने इसका निर्माण किया था। राजिम का महत्व बताते हुए लेखक पुरुषोत्तम अनासक्त बताते हैं,
1: महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा है और राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। महानदी ने छत्तीसगढ़ को उपजाऊ धरती दी है और धान की खेती इस इलाके की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म से छत्तीसगढ़ का संबंध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महानदी के रेत में सोना मिला करता था। सही बात तो यह है कि सोंढूर का नाम ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने रखा है, सोना जिसमें ढुलता हो, सोना जिसमें से आता हो। और पहले लोग यहाँ से सोना निकाल लिया करते थे। राजिम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। राजिम में भगवान श्री राजीव लोचन का विख्यात मंदिर है और इसमें आदमकद प्रतिमा है भगवान विष्णु की। वह विष्णु की प्रतिमा यज्ञ पुरुष के रूप में स्थापित है। राजिम वैष्णव तीर्थ भी है, राजिम शैव तीर्थ भी है और राजिम जो है वो जैनियों का भी तीर्थ रहा है, क्योंकि उसके भी कुछ चिन्ह यहाँ मिलते हैं। गुरु घासीदास जी इसी इलाके के हैं। इसके अलावे और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जन्म लिए जिनके विषय में इतिहास तो मौन है, लेकिन दंत कथाएँ प्रचलित हैं। एक बहुत ही आदिवासी नायक जो बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जिसका नाम है कचना धुरुआ, वो इसी इलाके का था।
0: स्वतंत्रता संग्राम में भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

0: पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहां अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर संघर्ष किया। श्री अनासक्त जी कहते हैं,
1: स्वतंत्रता संग्राम में महानदी के तट पर रहने वाले लोग बहुत अधिक सक्रिय रूप से भाग लिए और उसमें धमतरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। धमतरी के पास कंडई नामक एक गांव है जहां से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। धमतरी में उस समय छोटे लाल बाबू थे, नत्थू जी जगताप थे, नारायण राव जी मेघावाले थे। ये तमाम लोग स्वतंत्रता संग्राम के महानतम सेनानियों में से हैं। मैं इनका नाम जिनका ले रहा हूँ, और इसी इलाके में पंडित रविशंकर जी शुक्ल ने भी इनके सहयोग से स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र किया था। राजिम में उस समय पंडित सुंदरलाल जी शर्मा थे जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण का कार्य शुरू किया और जिससे गांधी जी भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। रामायण और महाभारत भारतवर्ष की ऐसी रचनाएं हैं और ऐसे महाकाव्य हैं कि हर इलाके में इनका प्रभाव जनजीवन पर पड़ा है। महाभारत का प्रभाव बहुत अधिक इस इलाके पर पड़ा और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी भाषा में महाभारत को कहना शुरू किया जिससे पंडवानी का जन्म हुआ।

0: छत्तीसगढ़ के महानदी क्षेत्र में हुए जनजागरण और लोक भाषाओं के विकास के बारे में लेखक नारायण लाल परमार जी का मत है।
1: नहर सत्याग्रह कंडेल में हुआ था, जंगल सत्याग्रह रुद्री के पास हुआ था। वो नहर सत्याग्रह, नहर का पानी नहीं लेने देती थी सरकार, तो उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। वहाँ उस सिलसिले में भी गांधी जी आए थे यहाँ। तो ये क्षेत्र भी इस लोक कला की दृष्टि से बड़ा धनवान रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में दो ही ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक तो अपने बघेरा के दाऊ रामचंद्र देशमुख और दूसरे जो आपके हबीब तलवी साहब हैं। अब भरतरी की कलाकार भी आपको बिलासपुर में मिल जाएगी, सूरज भाई खांडे। तो इस तरह से हर कला क्षेत्र में यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे।
0: महानदी के तट पर एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है सिरपुर। पहले यह शरवपुरी राजाओं के अधीन था। यहाँ पर है प्राचीन गंधेश्वर महादेव का मंदिर। 8वीं शताब्दी के सोमवंशी राजा महाशिव गुप्त द्वारा निर्मित बौद्ध विहार यहाँ की महत्वपूर्ण प्राचीन कीर्ति है। रायपुर से कसडोल होते हुए आने पर गिधौरी में महानदी पार करने पर पड़ता है शबरी नारायण मंदिर। भगवान रामचंद्र की यहाँ पर शबर राजा पूजा करते थे। उनकी स्मृति में देवता का नाम शबरी नारायण या शिवरी नारायण हो गया है।
2: शैशव और किशोरावस्था का क्षण और चंचल दिन बिताकर उन्हें पीछे छोड़ते हुए मैं विकसित होती गई, पल्लवित होती गई। यौवन की ज्वार से मैं हुई विमुख, फिर उड़ीसा की धरती छूटी हूँ, यौवन की प्रगल्भता से भरी। यहाँ मैं नायिका हूँ, कभी गुमान भरी तो कभी प्रगल्भा। भारत में इतनी नदियां हैं, किसी को तो महानदी कहकर पुकारा नहीं जाता। मुझे ही यह गौरव मिला है। हाँ, एक नाम और है मेरा, चित्रोत्पला।

मेरी यात्रा भूमि उड़ीसा में जगन्नाथ पधारी। कहा जाता है कि आज के इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था। संबलपुर, सोनपुर और बिनिका के ऊपर शैया पर लोट कर मैं आवेश और रोमांच में सिहार उठी। मुझे लगा प्रियतम मिलन का पथ यही है। धर्म का भंडार भरा है इस धरती पर। मेरी गति चंचल हो उठी।

0: महानदी के तटवर्ती संबलपुर, सोनपुर, बिनिका आदि इलाके ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र बताते हैं,
1: महानदी कूल अवस्थित थिवा दर्शनीय स्थान मानक मध्य हुमार बक्र मंदिर होचे एक सर्वश्रेष्ठ दर्शन।
0: महानदी के किनारे अवस्थित हुमा का बक्र मंदिर एक विशिष्ट दर्शनीय स्थान है। ये बक्र मंदिर
1: निर्माण
0: बक्र शैली में तैयार किया गया था या बाद में किसी कारण यह वक्र रूप हो गया था, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह ये दर्शकों के लिए कौतूहल की सृष्टि करता है। ये मंदिर महानदी के किनारे स्थित 8 शिव मंदिरों में अन्यतम है।
1: विश्वनाथ संबलपुर जिपरी मानेश्वर सेपरी हुमार ए बिमलेश्वर मंदिर टी ऐतिहासिक दृष्टिकोण एवं धार्मिक दृष्टिकोण मध्य सुप्रसिद्ध।
0: महानदी के इन इलाकों में अनेक कलाकार, चिंतक, मनीषी, साहित्यकारों का आविर्भाव हुआ है। बौद्ध दर्शन की शाखाएं जैसे वज्रयान और तंत्रयान का विकास यहाँ हुआ था। संत कवि भीम भोई ने इसी के तटवर्ती छोटे से गांव खलियापल्ली को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ने महानदी तटवर्ती अरण्य सुषमा को काव्य भाषा देकर जीवंत कर डाला। इस क्षेत्र की महिमा व समस्या के बारे में बुद्धिजीवी डॉक्टर श्रद्धाकर सुपकार कहते हैं,
2: महानदी ऊंचे और माँ आप बराबर हमको पालन करे अच्छी महापुरी।
0: पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर अंचल की भाषा संस्कृति की एक अलग मिठास है। इस अंचल के अनेक वीर सपूतों ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महानदी इस अंचल की माँ है, लेकिन प्रदूषण के कारण अब महानदी का जल व्यवहार के योग्य नहीं रह गया है।
2: एठाकार पर्व परमाणी नुआखाई पुष्पनी विशेष कर ये जो कृषि संस्कृति ये आम विशेषत्व।

महानदी में प्राचीन काल में नौ वाणिज्य चलता था। अभी से एक बार फिर राष्ट्रीय जलपथ के रूप में परिणत किया जा सकता है। इस विषय पर उड़ीसा विधानसभा के सदस्य

0: এটি যে বিদেশী পক্ষী সব আসতে হিমালয়ান বার্ডস সম্বলপুর পাখর ধমা ঠার প্রায় বৌদ্ধ পর্যন্ত এই মানে লক্ষাধিক পরিমাণ এটি ঠুল
1: মহানদী কে অঞ্চল মে শীতকাল মে বহু বিদেশী পক্ষী আতে হ্যাঁ এসে দৃষ্টিকোণ সে এলাকে মে পর্যটন কে লিয়ে বিকাশ হোনা চাহিয়ে।
2: यहाँ गिरिराज नंदिनी हूँ। बाघ भालू हो या दंतावल हाथी या कुलांच भरते मृगों का झुंड, सब यहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं। दंतावल हाथी के गंडस्थल से निकलती हुई मदजल मेरे वक्ष स्थल को आप्लावित कर देती है। बिजली की तरह दौड़ते मृक्षावक मेरे स्थिर नील जल में छवि निहार कर आश्चर्य से ठिठक जाते हैं। शीतकाल में दूर हिमगिरी से आने वाले अतिथि पक्षी खूब आनंद में किलोल करते विचरते दिख जाते हैं मेरे तट पर।

0: महानदी का यह 7 कोसी खाल और इस गहरे विशाल खाल के दोनों ओर शैल राजी का मनोरम दृश्य। 7 कोस के घेरे में फैला ये खाल चार चार जिलों कटक, पुरी, फूलवाड़ी और ढेकानाल की सीमा को स्पर्श करता है। 7 कोसी खाल के निकट ही टिकरपड़ा एक और अलग स्थल है। दोनों ओर घने वन, नदी तट पर घड़ियालों को पालने, पोषित करने और विवर्धित करने का प्रयास जोरों पर है। सरकारी योजना से इसको एक विशिष्ट अभ्यारण्य के रूप में और गरिमा मिल गई है। वहाँ के वन खंड अधिकारी श्री सुरेश चंद्र मिश्र के अनुसार,
1: 7 कोसिया गंड अभ्यारण्य रे आमर विशेष करी अनुगुल वनखंड इलाका रे
0: महानदी के तट पर टिकरपड़ा अभयारण्य 795 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इस अभयारण्य में दुर्लभ जीव जंतु हैं। महानदी का 7 कोसिया खाल इस अभयारण्य के क्षेत्र में है। यहाँ पर एक समय बहुत मगरमच्छ रहते थे। उनके वंश की समाप्ति के बाद 1975 में विश्व खाद्य संगठन की सहायता से भारत सरकार ने एक कुंभीर योजना शुरू की। उसी वर्ष नेपाल से लाए गए अंडों से 250 मगरमच्छ उत्पन्न हुए। इस योजना के फलस्वरूप उड़ीसा में घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हुई और इन घड़ियालों के चमड़े से एक लाभदायक व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। महानदी के तट पर तीर्थों की तो माला बनी है। सोनपुर, बांकी, कंटीलो, वैदेश्वर, भट्टारिका, ध्वलेश्वर आदि अनगिनत स्थल, पैरी, सोंढूर, ईव, जीरा, तेल आदि उपनदियों का जल स्रोत अपने हृदय में धारण कर महानदी समुद्र की ओर चलती है। अनगिनत तीर्थों की धूली अपने अंदर समेट कर इटलाती मंद मंद चल रही युग युग से, सदियों से।

बाराबाटी दुर्ग के निकट से बहकर गुजरते हुए देख पाती हूँ इतिहास की विजय यात्रा। बाराबाटी दुर्ग ठहरा इतिहास के इस सारे उत्थान पतन से भरे इतिहास का मूक साक्षी।

ने भूमिका ग्रहण की है। मध्य प्रदेश में दूधवा गंगरेल आदि जलाशय बने, उड़ीसा में फिर हीराकुद बांध बनने पर बहुमुखी विकास के द्वार खुल गए।

कटक के निकट विद्याधरपुर में धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना देश में कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एशिया महादेश के चावल के अनुसंधान में गौरवपूर्ण तीर्थ बनकर नया रूप ले रहा है। महानदी पारादीप के पास फॉल्स पॉइंट पर से जाकर सागर में मिलती है। सभ्यता की शिल्प की इतनी प्रगति होने पर भी आदमी के मन में बर्बरता का राज है। वो बदला जा रहा है, वो स्वार्थी बनता जा रहा है, स्वेच्छाचारी बनता जा रहा है। इस शिल्प सभ्यता के तहत प्राकृतिक संपदाओं का ध्वंस करने में लगा है। जंगलों का लोप होता जा रहा है, नदी का नील जल कारखानों की उपस्थिति में दूषित होता जा रहा है, प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। महानदी से भला कैसे बचे रह सकती? सभ्यता का अभिशाप उसे भी धारण करना पड़ेगा। विष के जीवाणु इससे जीवन को बचाकर रखना जरूरी है।

0: इस प्रकार
1: मैं बहती चली
0: ये बहती चली जा रही है,
1: युगों से चल रही है, चलती ही रहेगी, देखती जाएगी सभ्यता का आगमन, आदमी के आंसू पसीने के संग्राम में महाजीवन के स्रोत की तरह
2: महासागर के साथ मिलकर
1: एकाकार होने के लिए
2: दौड़ रही है
1: ये
2: महानदी
1: युग युग से
2: सदियों से

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: श्रोताओ, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि सती दाह से क्रुद्ध हुए भगवान शिव शंकर ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, उन्हें दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध के बाद वीरभद्र ने दक्ष को मार डाला, उसका सिर काटकर अग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष वध के बाद सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति रुक गई। चिंतित ब्रह्मा और विष्णु देवाधिदेव शिव के पास गए, उनसे दक्ष को क्षमा कर फिर से जीवन दान देने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनका अनुरोध मान लिया, स्वयं जाकर दक्ष को जीवित कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। जब असुरों ने देखा कि भगवान शिव अखंड ध्यान में मग्न हैं, तो उनका साहस बढ़ने लगा और वे धीरे धीरे अपना सर उठाने लगे। दिन प्रतिदिन उनके अत्याचार बढ़ते ही गए।
2: तो क्या अपनी प्रजा के बढ़ते कष्टों को देख परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया?
1: किया क्या नहीं शौनक जी, उनके हाथों अनेक दुर्दम्य असुरों का वध हुआ, परंतु असुर श्रेष्ठ तारकासुर उनके वश में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसके गले तक पहुंचकर पुष्प माला बन गया था। वो तीनों लोगों को जीतकर उनका स्वामी बन गया था।
2: आश्चर्य है महाज्ञानी सूत जी, तारकासुर इतना बलशाली कैसे बन गया?
1: तारकासुर ने एक समय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे इच्छित वर दे दिया था।

0: नारायण नारायण, विधात आपके वरदान के कारण ही तो तारकासुर अजय बन गया है।
1: पुत्र नारद, हम भगवानों की तो प्रकृति ही है अपने भक्तों को सुखी बनाना। हम सब भक्तों को स्वच्छ मन से वरदान देते हैं उनके हित के लिए।
0: परंतु परमपिता, कभी कभी आपका कोई भक्त आपके वरदान को ही अपना अस्त्र बना लेता है, अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर डालता है।
2: मुने नारद, हम हर एक जीव को उसके जन्म के समय मस्तिष्क देते हैं। उस मस्तिष्क में हम कोई विचार नहीं भरते। उसका कैसे उपयोग करना है यह हर एक प्राणी का निजी अधिकार होता है।
1: हमने प्राणियों के लिए तीन गुण बनाए हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। अब ये प्राणी के मस्तिष्क पर निर्भर है कि वो कौन सा गुण अपनाता है। जो जैसा गुण अपनाएगा वैसा ही व्यवहार भी करेगा।
0: किंतु श्री हरि, सृष्टि का संचालन तो आपके हाथों में है।
2: है, अवश्य है, परंतु प्राणियों का मस्तिष्क हमारे अधीन नहीं है। यदि अधीन होता तो देवता, मानव और असुर में भेद क्यों होता? सभी सत्कर्म करते हुए सत्य के ही पथ पर चलते तो आज हमें तारकासुर के दुष्कर्मों से पीड़ित होकर उसके विनाश की बात न सोचनी पड़ती।
0: हे विधि, जब आपको ज्ञात ही था कि असुर उत्पाती हैं, तो प्रभु उनको पैदा ही क्यों किया?
2: मुने नारद, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए विविधता आवश्यक है। नहीं तो हर पेड़ पौधे का एक ही आकार होता, हर मानव मानवी, सुर असुर, सभी का एक ही रूप होता। कल्पना करो, जीवन कितना नीरस होता।
0: परंतु असुरों द्वारा ये विध्वंस तो आप रोक सकते थे प्रभु।
1: महानिर्माण से पूर्व महाविध्वंस आवश्यक होता है। जितना ऊंचा और बड़ा भवन निर्माण करना हो उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है। समतल भूमि पर अट्टालिकाएं बना पाना संभव नहीं है। और पुत्र, जैसे निर्माण के लिए विध्वंस आवश्यक है, वैसे ही विध्वंस के लिए निर्माण आवश्यक है।
0: नारायण नारायण, प्रभु आप किस निर्माण की योजना बना रहे हैं?
1: शिव पुत्र की उत्पत्ति की योजना नारद।
0: शिव पुत्र? प्रभु आप ये असंभव।
1: तारकासुर और उसका वंश उन्हीं असुरों में से है जिन्हें मात्र शिव पुत्र ही मार सकता है।
0: किंतु देवी सती की मृत्यु के बाद ये कैसे संभव होगा?
1: पुत्र, सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए असंभव को संभव बनाना ही होगा।
0: परंतु कैसे परमपिता?
1: सदा शिव का दूसरा ब्याह रचाकर।
2: परंतु विधे, भगवान शिव शंकर तो गहरी तपस्या में लीन हैं, तंद्रा भंग होने से क्रोधित भी हो सकते हैं।
1: हाँ भगवान, हो सकता है। और ऐसा ना भी हो तो भी प्रश्न ये उठता है कि लीलाधर भगवान शिव शंकर की पत्नी कौन होंगी?
2: महाप्रभु, महाप्रभु माता शिवा के अतिरिक्त किसी और को तो स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब उन्हें ही पुनः अवतार लेना होगा।
1: परंतु इस बार किस रूप में लक्ष्मी पते?
2: ये विचारणीय है।
0: नारायण नारायण नारायण। प्रभु विष्णु, आपके श्वेत द्वीप में शीघ्र ही एक धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है।
2: हाँ नारद।
0: और परमपिता, आपके मानस पुत्र सनत कुमार इस संगोष्ठी में भाग लेने आ रहे हैं। उनके मुख से निकले शब्द ब्रह्मवाक्य माने जाते हैं प्रभु।
2: तो
0: प्रभु, दक्षराज ने अपनी पुत्री स्वथा का विवाह पितरों से किया था। उनकी तीन मानस पुत्रियां हैं, मेना, धन्या और कलावती। तीनों ही परम विदुषी हैं और धर्म की मूर्ति है प्रभु। प्रभु, यदि वे इस धर्म गोष्ठी में आ जाएं तो
2: तो क्या ऋषिवर नारद, आप क्या लीला रचने जा रहे हैं?
0: नारायण नारायण।
3: परंतु मुनि श्रेष्ठ नारद, संतों के समागम

0: स्त्रियों का क्या काम?
1: नारायण नारायण, ब्रह्मापुत्र सनत कुमार ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये पितरों की मानस पुत्रियां हैं। ये अयोनिजा अवश्य हैं, परंतु लोक व्यवहार में ये स्वधा पुत्रियां ही मानी जाती हैं। ये तीनों ही परम योगिनी और ज्ञानी हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: इनका धर्म ज्ञान तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। देवी मेना, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपके उत्तर ही हमें संतुष्ट कर पाएंगे कि आप इस संत समागम में भाग लेने योग्य हैं या नहीं।
2: पूछिए सनत कुमार।
0: भक्ति के कितने अंग होते हैं देवी मैना?
2: भक्ति के 9 अंग होते हैं देव। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण।
0: उत्तम, अति उत्तम। इनके स्वरूप क्या होते हैं देवी?
2: सनत कुमार, सबसे पहले है श्रवण, अर्थात प्रभु लीलाओं की कथाएं सुनना, और फिर कीर्तन, अर्थात उच्च वाणी में प्रभु के गुणगान करना, भजन आदि करना, और तीसरा है स्मरण, अर्थात प्रभु को सर्वव्यापी मानकर सदैव निर्भय रहना।
0: और सेवन देवी?
2: हृदय और इंद्रियों से प्रभु की सेवा को सेवन कहते हैं। प्रभु को किनकर समझकर उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना दास्य कहलाता है। इसी प्रकार धन वैभव के सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को पाद्यादि 16 उपचारों को समर्पित करना अर्चन होता है।
0: परंतु देवी, अभी वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण शेष हैं।
2: जानती हूँ सनत कुमार, उनके बारे में भी बताती हूँ। मंत्रोच्चार करते हुए इष्ट देव को साष्टांग करना वंदन होता है। ये विश्वास रखना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मंगल के लिए ही होता है, सख्य भक्ति का स्वरूप है। और देह समेत अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, अपने निर्वाह के लिए कुछ भी ना बचा के रखना आत्मसमर्पण कहलाता है।
0: आपने सिद्ध कर दिया देवी मैना, सिद्ध कर दिया कि एक शिक्षित स्त्री धर्माचरण जानती है, अतः वो पुरुषों के साथ संत समागम में हिस्सा ले सकती है।
1: नारायण नारायण नारायण।
2: क्षमा करें ऋषि सनत कुमार, केवल शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित स्त्री भी धर्माचरण जानती है। पतिव्रत धर्म से बड़ा धर्माचरण भला और कौन सा हो सकता है?
0: हम समझे नहीं देवी मैना, व्याख्या कीजिए देवी।
2: मुनिवर, धर्माचरण के लिए आप मुनियों को बटना तो नहीं पड़ता, परंतु पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली नारी को भिन्न भिन्न रूप लेने पड़ते हैं। कभी वो पति की प्रेयसी बनती है, तो कभी सेवा करने वाली दासी, कभी वो पति की वंश परंपरा चलाने के लिए जननी बनती है, तो कभी पति का अपमान करने वाले के लिए दुर्गा। इस पत्नी धर्म के अंतर्गत कितने ही अन्य धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है। स्त्री अगर ये धर्माचरण छोड़ दे तो उसका परिवार टूट जाता है।
0: धन्य है आप, धन्य है देवी मैना।
1: नारायण नारायण नारायण।
0: मैं बहुत प्रसन्न हुआ देवी मैना, बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपको तथा आपकी दोनों बहनों धन्या तथा कलावती को आशीर्वाद देता हूँ।
3: ज्येष्ठा मैना, आप हिमगिरी राज हिमवान की पत्नी बनेंगी और आपकी पुत्री पार्वती के नाम से विख्यात होगी।
1: नारायण नारायण नारायण।
3: योगिनी धन्या, आप राजा जनक की पत्नी होंगी। आपके यहां स्वयं महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी। और कलावती, आप द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेंगी। आपकी पुत्री राधा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होंगी।
1: नारायण नारायण नारायण।
4: आइए हमारे वाम में विराजिए, महाप्रभु के आदेश से दुर्गा स्तुति आरंभ करते हैं।

0: माते, जगत जननी, आपके दर्शन मात्र से ही हृदय के सभी क्लेश धुल गए हैं।
1: हे शिवलोक निवासिनी, आपने हम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है।
2: हे कल्याणकारी शिवा, आपके चरण का स्पर्श पाते ही ये समस्त हिम प्रदेश पवित्र हो गया है।
3: माते, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। प्रसन्न रहो हिमवान पत्नी मीना। ब्रह्मदेव, आप भविष्य वक्ता हैं, आप मुझसे किस भविष्य की अपेक्षा रखते हैं?
0: माते, आप सर्वज्ञ से कुछ भी कहना सूर्यदेव को दीप दिखाने जैसा होगा। फिर भी अंबे, हम सबका आपसे एक निवेदन है।
3: निसंकोच कहिए देवगण।
1: माता शिवा, सती रूप में आपके अवतरण से समस्त जगत प्रसन्न और निश्चिंत हो गया था, परंतु पिता द्वारा पति के तिरस्कार के कारण आपने देह त्याग कर दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि शोक में डूब गई है माते। स्वयं महादेव विरक्त होकर तपस्या में लीन हो गए हैं माते।
0: अंबिके, आपके स्वधाम पधार जाने से देवताओं का मनोरथ अपूर्ण रह गया है। वे अपने ही लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। सब और असुर राज स्थापित हो गया है। तीनों लोकों के जीव व्याकुल हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।
1: और माते, इस विपदा का एक ही निराकरण है, शिव पुत्र की उत्पत्ति।
0: और ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है जगदम्बे।
3: तो आप सबकी क्या इच्छा है? माते, माते, आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर तीनों लोकों के वासियों को असुरों से मुक्ति दिलाएं।
2: माते, आप पुत्री के रूप में मेरे यहां अवतरित हों।
1: शिव पत्नी बनकर संतान उत्पन्न करें माते, जो हमसे वरदान प्राप्त कर असुरों का नाश करे।
3: ऐसा ही होगा विष्णु हरि। परंतु मीना, आज्ञा महादेवी, इसके लिए तुम्हें आने वाले चैत्र मास से 27 वर्ष की तपस्या करनी होगी।
4: जो आज्ञा माते। परंतु माँ।
3: कहो मीना, मन में कुछ ना रखो।
4: माते, मुझे वर दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्ति भी हो, जो असुरों का विनाश करने में सक्षम हो।
3: तथास्तु। मीना, तुम मेरे अवतरण से पूर्व 100 बलशाली पुत्रों को जन्म दोगी। उनमें सर्वोत्तम होगा मैनाक। उसके पश्चात मैं पुत्री के रूप में तुम्हारी गोद में आऊंगी।

0: उसका नाम पार्वती रखना। पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री।
1: आप धन्य हैं महादेवी, धन्य हैं।
2: आपने अपने भक्तों पर असीम कृपा की है माते।
3: हम आपके सदा से ही ऋणी रहे हैं माते।
2: आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं।
4: महाज्ञानी शौनक जी, ये वरदान देकर महादेवी शिवलोक लौट गईं। देवी मेना ने महादेवी की आज्ञा से 27 वर्ष का तप आरंभ किया। महादेवी के आशीर्वाद से मेना को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से सर्वश्रेष्ठ था मैनाक।
5: परंतु महाभाग, तीन लोकों के प्राणी तो बड़ी आतुरता के साथ पार्वती जन्म की प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
4: हाँ शौनक जी, देवी शिवा के आशीर्वाद से हिमवान के घर एक अत्यंत रूपवती कन्या ने जन्म लिया। महादेवी के आदेश पर ही उसका नाम पार्वती रखा गया। चारों दिशाओं में आनंद का वातावरण छा गया। घर घर मंगल वाद्य बज उठे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे।
5: ये सब तो स्वाभाविक ही था। तारकासुर संहारक की जननी ने जो जन्म लिया था।
4: हिमवान पुत्री पार्वती वर्षा में गंगा की जल राशि की तरह बढ़ने लगी। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव भक्ति की प्रबल भावना थी। वो हिमवान के घर में प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने बैठ जाती और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। एक दिन उनकी भक्ति से विभोर होकर नारद मुनि बालिका पार्वती के दर्शन को वहां पहुंचे।
6: नारायण नारायण नारायण।
2: महर्षि नारद, आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दें।
6: नारायण नारायण। गिरिवर, हिमवान, स्वयं जगदम्बा को भला मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? मुझे तो इनके दर्शनों की अभिलाषा यहाँ खींच लाई है।
0: महर्षि नारद, आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर इसका भविष्य बताइए।
6: देवी मैना, आपके घर में तो स्वयं शिवा ने जन्म लिया है। भविष्य का निर्माण करने वाली का भविष्य भला मैं क्या बताऊं? फिर भी पुत्री पार्वती, अपना हाथ तो दिखाओ। गिरिराज, आपकी पुत्री की हस्तरेखाएं तो शुभ लक्षण ही दिखा रही है। नारायण, ये माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। ये परम साध्वी तथा स्वजनों को आनंद देने वाली बनेगी।
0: और पति मुनि श्रेष्ठ,
6: अपने पति को ये अत्यंत सुख पहुंचाएंगी। इसके पति सदा इनकी सेवा से प्रसन्न रहेंगे और इनका आदर सम्मान करते रहेंगे। परंतु ये क्या?
0: क्या हुआ मुनि नारद?
6: ये तो बड़ी ही विलक्षण रेखा है।
2: मुनिवर, शीघ्र बताइए क्या अशुभ होने वाला
6: है? नारायण नारायण नारायण, आपने अशुभ की बात कैसे सोच ली? गिरिराज, देवी का कोई अशुभ कर सकता है? बस इनके पति का रंग रूप स्वरूप कुछ।
0: बताइए महामुनि, बताइए, रुक क्यों गए?
6: तो सुनिए देवी मैना, इन्हें एक अर्धनग्न भभूतधारी निर्गुण निष्काम सन्यासी पति के रूप में मिलेगा।
0: ये कैसी भविष्यवाणी कर डाली आपने ऋषिवर? मेरी यह सुंदर पुत्री एक कुरूप योगी की पत्नी बनेगी।
6: यही सत्य है देवी मैना, इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये विधि का विधान है।
2: परंतु महर्षि, परम पिता ब्रह्मा ने तो ये आशीर्वाद दिया था कि स्वयं देवाधिदेव शिव पार्वती के पति होंगे।
6: नारायण नारायण नारायण, आपको इस आशीर्वाद पर भी संशय नहीं होना चाहिए।
0: परंतु जिस रूप का आपने वर्णन किया है वो देवाधिदेव का हो ही नहीं सकता। वो तो अत्यंत सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी है।
6: नारायण नारायण, आपका कथन भी सही है देवी मैना, परंतु समय और काल कभी कभी व्यक्ति को रूप बदलने को भी बाध्य कर देता है। नारायण, गिरिराज हिमवान,
2: महर्षि,
6: देवी मैना, आप निश्चिंत रहें, पार्वती को शिव ही प्राप्त होंगे।

0: भी पार्वती जीवन पर्यंत उनकी सहभागिनी बनी रहेंगी। नारायण नारायण।
1: फिर महामुनि सूत जी, घटना चक्र किस प्रकार घूमा?
2: शौनक जी, उत्तम गुरुओं से शिक्षा दीक्षा पाती देवी पार्वती बड़ी होने लगी। यौवन अवस्था में पहुंचते पहुंचते पिता हिमवान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी।
1: चिंता? कैसी चिंता सूत जी महाराज? पार्वती जी को वरदान प्राप्त था कि उनका विवाह शिव से होगा।
2: शौनक जी, पुत्री के विवाह की चिंता पिता के लिए स्वाभाविक ही होती है, और ये चिंता मात्र दरिद्र पिता को ही नहीं होती, सर्वसाधन संपन्न पिता भी इससे मुक्त नहीं होते।
3: सृष्टि रचयिता परमपिता ब्रह्मा को मेरा नमन है।
2: उत्तुंग भव पर्वतराज हिमवान, व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? पुत्री पार्वती का महादेव से विवाह होना निश्चित है।
3: परंतु कैसे? महादेव ने सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग रखा है। उनका समग्र ध्यान इस समय परम ब्रह्म में है। इसी कारण वे देवताओं तक को दर्शन नहीं दे रहे। वे ध्यान छोड़कर विवाह की ओर कैसे उद्यत होंगे? और फिर
2: रुक क्यों गए गिरिवर? कहो, और फिर क्या?
3: प्रभु, किन्नरों के मुख से एक और बात भी सुनने में आई है।
2: वो क्या है वत्सिमान?
3: कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने दक्ष पुत्री सती से एक प्रतिज्ञा की थी। प्रभु ने वचन दिया था कि वो उनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का वरण नहीं करेंगे। देवी सती की मृत्यु के पश्चात सदाशिव अपनी ये प्रतिज्ञा कैसे तोड़ेंगे?
2: तुम बहुत भोले हो गिरिवर। तुम्हारी पुत्री पार्वती ही अपने पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। सती भी शिवा का ही अवतार थी, और अब वही शिवा तुम्हारे घर आंगन में अवतरित हुई है। शिव और शिवा का साथ तो चिरंतन है पुत्र, इसलिए पार्वती ही शिव पत्नी होंगी, इसमें संशय की कोई बात नहीं।
3: आपके इन वचनों से मैं चिंता मुक्त हुआ भगवान। परंतु
2: हिमवान, अब परंतु कैसा?
3: भगवान शिव तो तपस्या में लीन।
2: तपस्या ही तपस्या की काट बनेगी
3: प्रभु।
2: महासाधी पार्वती तपस्या करके शिव जी का मन मोह लेंगी। अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर को संतुष्ट कर पार्वती भगवान शिव के आधे शरीर को अपने अधिकार में कर लेगी
3: प्रभु।
2: इस प्रकार भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर स्वरूप प्रकट होगा। जाओ वत्स, पुत्री पार्वती से शिव आराधना करने को कहो।
3: छो आज्ञा प्रभु, छो आज्ञा।
1: और शौनक जी, पिता की आज्ञा से देवी पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। विप्रवर सूत जी, उनकी तपस्या क्या रंग लाई?
2: महाज्ञानी शौनक जी, पार्वती की तपस्या कोई सीधी सादी तपस्या नहीं थी जो शीघ्र ही सार्थक हो जाती। उनका लक्ष्य था महादेव को पति के रूप में पाना। ये लक्ष्य भले ही असाध्य ना हो, परंतु कठिन अवश्य था।
1: आप उचित कहते हैं सूत जी, भोले भंडारी को प्रसन्न करना हर एक के वश की बात नहीं।
2: शौनक जी, लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसे पाने के लिए उतना ही कठिन परिश्रम करना होता है। परिश्रम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
1: तो देवी पार्वती का यह परिश्रम कैसे सार्थक हुआ?
2: शौनक जी, इस विषय को हम अभी यहीं विश्राम करने देते हैं, आगे की कथा कुछ समय उपरांत।
4: शिव महिमा का आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के पहले अध्याय से आठवें अध्याय तक से लिया था।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्व यमनुं स्वरूप छे एवा जगदवंद्य चरणारविंदथी सुशोभित हे माँ दुर्गा अमारुं आपत्तियोमांथी रक्षण करो।

सिंह ऊपर विराजिला, मस्तक ऊपर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओथी धारण करता, त्रण नेत्रोथी सुशोभित मधुर शब्द करती घुघरियो वाला कंदोरा थी, अने रणकार करता झांझर थी शोभता, रत्न थी उज्ज्वल कुंडल वाला श्री दुर्गा माता, हमारा दारिद्र्य अने दुःखनो नाश कर।

अर्थात हे महादेवी, तमो धर्मोने उत्पन्न करणारा विधात्री छो, दरेक शास्त्रोनी जननी छो।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ಭವಭಂಜನ ಭವಭಂಜನ ಗುಣ ಭವಭಂಜನ ಗುಣ ಗಾಮೋ ಅಪಮನ ಅಪನ ರಾಮ ಅಪ್ಪನೇ ರಾಮ

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।